राम राम राम राम जी बोलो। सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम जी बोलो। सत्य नाम हरि हरि हरि हरि हरि हरि जी बोलो। हरि हरि हरि हरि हरि हरि जी।